0: Left, right, left. Left, right, left. Left and right, that's all right. Left and right, that's all right. अपना हाथ जगनाथ कर बे भाई बाजी मात. अपना हाथ जगनाथ कर बे भाई बाजी मात. तेमनी दिन हट बे ना खुल बे भाई जोर परा. तेमनी दिन हट बे ना खुल बे भाई जोर परा. अपना हाथ जगनाथ कर बे भाई बाजी मात. अपना हाथ जगनाथ कर बे भाई.
1: শুনছেন রেডিও বাংলানেট ডট কম বাংলার গান বাঙালির প্রাণ